तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव गम गम असंख लो असंख कहे सिर पार हो अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुणगाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जेनू एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ बिन नावै नाही कोथा कुदरत

गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे सही तुदनु गावह जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिनो पाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई कर सी हुक्म न करना जाय सो पातशाह हो साह पातशाह हिम नानक रहण रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोड़ी ध्यान की करह विभूत खिंथा काल कुआरी काया जुग डंडा प्रतीताई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तसाया दे स्वाद अनिल अनाद अनाद जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कटकट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दे कार चलावे लिखे आवै भाव आदेश तसया दे स्वाद अनिल अनाद अनाद जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवाण एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जिप तस भावै तिवै चलावे।

अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है आजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूर है अचंज है अमीक है रफीक है तंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजह है अनंत है महंत है अलीक है नृसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अजूत है आलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है

मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टेष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा मृद करता दुर्दर्दं अगंग ओघहरता परम परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो प्राजी समस्ता सतामं तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं आजू हैं आदेश हैं अपेस हैं पुजंग पर्यात शांद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने नमस्त्वंग नृनाथे नमस्त्वंग प्रमाथे नमस्त्वंग अगंजे नमस्त्वंग अपंजे नमस्त्वंग अकाले नमस्त्वंग अपाले नमो सर्वदेश नमो सर्पेश नमो राजराज नमो साहसाज नमो साहसाह नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृत्संग नमो सर्वकृत्संग नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिद्धे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदारिद्र सिद्धं निवासी

कि राज करही है कि कर्मं करही है कि सर्वं कली है कि सर्वं दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौन है कि सर्वत्र देशा है कि सर्वत्र पेशा है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साजा है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र भाव के सर्वत्र देश है सर्वत्र भेसा है सर्वत्र काल है सर्वत्र पाल है सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज है सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है सर्वत्र पोख है सर्वत्र त्राण है सर्वत्र प्राण है सर्वत्र देश है सर्वत्र भेसा है सर्वत्र मान्य सदैव प्रधानी है सर्वत्र जापी है सर्वत्र थापी है सर्वत्र पान है सर्वत्र मान्य है सर्वत्र इंद्र है सर्वत्र चंद्र है सर्वं कली में के परम में गरीब उल परस्त बिलंदुर मकान जमीन उल जमान है।

निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रवाह है, सुजुक्त सुधा है, सदैव स्वरूप है, अपेदी अनूप है, समस्त उपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्त सलाम है।

त्रिभुक्त स्वरूप है, अशिज है, अशूत है, कि नर्क प्रणास है, पृथ्वी प्रवास है, नोक प्रवाह है, सदैवं सदा है, विभुक्त स्वरूप है, प्रजोक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रवाह है, अनुक्त स्वरूप है, प्रजोक्त अनूप है, चाचरी शन अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अपगत है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत

सर्वंपर हैं, सर्वंकर हैं, सर्वपासी हैं, सर्वनाशी हैं, करुणा कर हैं, विश्वंपर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं, ब्रह्मंड से खलखंड से परते पर हैं, करुणा कर हैं, अजपा जप हैं, अथपा थप हैं।

ज्ञानिया नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो सात रूपे नमो इंद्रेन्द्रे अनादम विभूते कलंकर रूपे अलंकर अलंक नमो आश्वासे नमो बाक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अच्छरी शांत

मारे पछा श्री अस्तु जो करियो रछा। राख ले हुए राखन हारे साहेब संसहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव की ओ वेदराज ब्रह्मा जूथी ओ जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब

आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को परमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिशानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब

चौपाई संबत 17 सहस्पण जय अनसार फुन तीन कहे जय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सुद्रव ग्रंथ सुधारा सुभैया।

मैं क्या मांगूं कि स्थिर न रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो। सजन सचा पातशाह फिर शाह दशा, जिस

तुदनो पवन पाणी बै संतर गावै राजा धर्म द्वारे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बीचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देव त्या दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बीचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो बीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सुर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कार कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बीचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाए हैपी होसी जाए न जासी रचना जैन रचाई रंगी रंगी पाती कार कर जैन सी माया जैन पाई कार कर देखै कीता अपना जो तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई कर सी फिर हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहण जाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोई केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहा जाए कहने वाले तेरे रहसमाए बड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणे गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाए सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गौर गुरहाय कहन न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंग्याईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुद विण सिद्धि किने न पाईया कर्म मिले नाही ठाक रहाईया आखण वाला क्या विचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जैस तू देह तिसे क्या चारा नानक सच सवारण हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाओ आखण औखा साचा नाओ साचे नाम की लागै भूख उत भूखै खाए चली है दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहेब साचे नाए रहाओ साचे नाम की तिल वड्याई आख तके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाहे वड्डा न होवै घाट न जाए ना ओह मरै न होवै सोग देदा रहे न चूकै भोग गुण एहो होर नाही कोए ना को हुआ ना को होए जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात जिन दिन करके कीती रात खसम विसारह ते कम जात नानक नावै बाज सनात रा गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सत पुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सुनाए कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन के बड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै त्रिपतासे मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम न ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास रा गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चितवै उद्दम जा आहर हर जियो परिया सैल पत्थर मैं जानतो पाए ता कारज का आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत्संग मिले सो तरिया गौर प्रसाद परम पद पाया सूके कास्त हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोय न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भौ करिया उड़े उड़ आवै सह कोसा तिस पाछै बचरे शरिया तिन कवन खिलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अस्त सिधान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया
ਰਾਗ

0: परम सत्कार योग गुरु की साजी निवाजी गुरु प्यारी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सारे गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगे अटल चावर तखत छत्र दे मालक गुरता गद्दी ते सुभायमान जागदी जोत तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बड़ी अपार कृपा रहमत बख्शिश की है जो अज इस पावन दरबार दे विच दो परिवारों का समेल होने जा रहा है। इस खुशी के मौके पर दास खालसा दीवान सोसायटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर के समूह सेवादारा वालों आप दूर नेड़े आए हुए सारे पतवंते सज्जणा का तहे दिलों धन्नवाद अते निघा जी उवाया कर रहा है। On behalf of Khalsa Diwan Society, Gurdwara Sahib Sukh Sagar, I would like to warmly welcome each one of you who came here all the way to bless this beautiful couple who is now sitting in front of Shri Guru Granth Sahib Maharaj. Thank you so much everybody for coming here, for being here today as you witness two souls being one in the presence of our eternal Guru. Sat Sangat Ji, sab to pehla jaruri benti hai, apne jo niji vichar ne, gallan baatan ne, कृपा करके उन्होंने संकोचन की कृपालता करो, चुप का दान बख्शिश करो, अपनी सुरत अपना ध्यान शब्द दे विच जोड़न दा यतन करना है। जिथे असी सतगुरां दे चरणां विच सुभाग जोड़ी दे आने वाले भविख दे लई अरदास बेनती करनी है, उत्थे ही अपनी झोलियां भी असी सतगुरां पासों खुशियां ते खेड़े दे नाल भर के लिजाणियां ने। इस करके जिन्हां गुरमुखां नूं बाणी पढ़नी आउंदी है, जो बाणी कंठ है, वह भी नाल गुरबाणी के गायन कर। बाकी संगतां वास्ते स्क्रीन लगियां ने, आप जी फॉलो कर सकते हो। आओ दोनों ही परिवारों की जानकारी दास साहब जी ने सन्मुख रख रहा है। काका जी जपन जोत सिंह मांगट, सपुत्र सरदार जगदीप सिंह जी मांगट अते माता जी भगवंत कौर मांगट, परिवार जलंधर पंजाब तो बिलोंग करता है अते इस वक्त परिवार सरी बीसी का निवासी है। जपन जोत सिंह के दादा जी का नाम सरदार मोहिंदर सिंह जी मांगट, इन्हों दादी जी माता अमरजीत कौर मांगट हैं, इन्हों के नाना जी सरदार सूरत सिंह जी संधु, नानी जी का नाम माता सरबजीत कौर संधु है। इसी लड़का परिवार कमिंग टू द ब्राइड बीबा जी सिमरनजोत कौर, सपुत्री सरदार गुरविंदर सिंह जी और माता जी अमनप्रीत कौर, परिवार जलंधर पंजाब तो ही बिलोंग करता है। इस वक्त यह परिवार भी सरी बीसी का ही निवासी है। सिमरनजोत कौर के दादा जी सरदार गुरचरण सिंह जी, दादी जी का नाम माता कुलदीप कौर है, इन्हों के नाना जी सरदार हरनूप सिंह जी और नानी जी माता सतवंत कौर है। सो इसी दोनों ही परिवारों की संखेप रूप में जानकारी हुण साध संगत जी आरंभता की अरदास होगी, जिस विच केवल सुभाग जोड़ी जपन जोत सिंह सिमरनजोत कौर इन्हों जो माता पिता हैं अपने अपने स्थानों पर खड़े हो करके हाजिरी लवाउणगे। बाकी साध संगत के चरणों में बेनती है अपने अपने स्थानों की कृपा करके सजे रहो। सामग्रास्क जपन जोत सिमरन जोत कौर एंड द पेरेंट्स वेयरएवर दे सिटिंग प्लीज स्टैंड अप फॉर द अरदास। जिथे जिथे बैठे हो अपने अपने स्थानों पर खड़े हो करके सावधान हो जाण। अरदास ही सेवा निभा रहे ने ज्ञानी हरबंस सिंह जी, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा साहिब सुख सागर, उपरंत सतगुरां दे मुख वाक ज्ञानी सुरेंद्र सिंह जी आप जी ने सरवण कराउणगे। आओ प्रेम सत हाजरी लवाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: ਜੋੜੇ ਹਰੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋੜੇ ਹਰੀ ਜਾਂਦੀ ਬੋਲੇ ਜਨਮ ਤੈਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੰਦਾ ਮੰਜਣ ਬਾਜੜ ਹਾਂ ਜਨਮ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਵਰ ਪਾਇਆ ਬਰਖ ਨੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿ ਸਤਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਹਾਂ ਜਨਮ ਜਨ ਜਨ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ ਹਾਂ ਕਪੜੇ ਵਾੜੇ ਬਾ ਦੇਵੋ ਇਹ ਖਬਰ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕਾਜੋ ਹੈਲਾ ਗੌਰ ਜਦੋ ਦਾਨ ਦਿਵਾਇਆ ਅਖੰਡ ਬਰਾ ਹੋਈ ਉਦਾਨ ਲਹਿਰ ਲਾਇਆ ਹੋਰ ਮਨ ਮੁਖਦਾ ਜੀ ਰੱਖ ਦੇ। ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕੂੜੇ ਕਰ ਕਰ ਪਜੋ ਜੁਗੈਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੁਗੈਂ ਜੁਗੋ ਸਾਧੂ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਚਲਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਧਨ ਵੇਲ ਵਧਾਉਂਦੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਰਮ ਜਾਲੇ ਮਨ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਬਿਨ ਝੂਠ ਪਸਾਰੇ ਮਨ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਵਿਖ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨ ਕਮਲ ਕਰ ਬੋਹਿਤ ਕਰਤੇ ਸਹਿਸਾ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟੈ ਵਡਭਾਗੀ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੈ ਆਜਵਾਦੀ ਸੇਵਕ ਸੁਆਮੀ ਭਗਤਾਂ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
1: ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਨ ਹਰ ਝੂਠ ਪਸਾਰੇ ਮਨ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਲੱਦੇ ਕੇ ਪਸਵਲੀ
2: ਧਰਨ ਸੁਵੰਨੀ
1: ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਦਰ ਨ ਚਲ ਮਲੀ
2: ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਉਠਾ
1: ਤਹਿ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰਨ ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ
2: ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੋਹੇ ਲੜੇ ਥੀਏ
1: ਗੁਰੂ
2: ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ
1: ਨਾਨਕ ਜਗਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਲ ਦੇਖੀ ਬਚਬਲੀ

गुरते बुझे सीजे सोए, गुरते सहज साच विचार, गुरते पाए मुक्त द्वार, पूरे भाग मिले गुरियाए, साचे सहज साच समाई रहाओ, गुर मिलिए तृष्णा अग्न बुझाए, गुरते शांत बसे मन आए, गुरते पवित्र पावन सुच होए, गुरते शब्द मिलावा होए, बाज गुरु सब भरम भुलाई, बिन ना भी बहुता दुख पाई, गुरमुख होवे सो नाम त्याई, दर्शन सच्चे सच्ची पत होई, किसनू कहिए दाता इक सोई, कृपा करे शब्द मिलावा होई, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साच समावा, गौड़ी गुरेरी महला तीजा, सो थाओ सच मन निर्मल होए, सच निवास करे सच सोए, सच्ची वाणी जुग चारे जापे, सब किश सच्चा आपे आपे, कर्म होवे सतसंग मिलाए, हर गुण गावे वैस सो थाए, रहाओ जलो ए जिहवा दूजे पाए, हर रस न चाखे फीका अलाए, बिन बूजे तन मन फीका होए, बिन नावे दुखिया चलिया रोए, रसना हर रस चाखिया सहज सुवाए, गुर पे कृपा ते सच समाए, साचे राती गुर शब्द विचार, अमृत पीवे निर्मल तार,